नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। संगीत माला में आपका स्वागत है और आप ये संगीत माला सुन रहे हैं केवल 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर। जी हाँ, और इस कार्यक्रम के हम जो आप तक पहुंचा पा रहे हैं वो हैं ICCA, दैट इज़ इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन। बिल्कुल, जे वीक मैं कह सकता हूँ जो हमारा इतना प्यारा दिन है आज, ये दिन और भी बहुत खूबसूरत दिन मैं कह सकता हूँ होने वाला है, बिकॉज आज बहुत ही सम्मान का दिन है कि हम इंडिया की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी सास्कैटून में। जी हाँ, तो इसीलिए ये मैंने गाने से शुरुआत करी है आज, कि आपका देशभक्ति के अरमान, आपके दिलों के अंदर जो इंडिया के प्रति आपकी भावनाएं हैं वो आपकी जागें, और आज उस कार्यक्रम को आज आप अटेंड करने के लिए सास्कैटून में ज़रूर पहुँचें। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन और हिंदू सोसाइटी ऑफ सास्कैटून के सौजन्य से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं लक्ष्मीनारायण टेम्पल में, जो कि गैराज सेल भी वहाँ पे चल रही है, और ये इंडिया इंडिपेंडेंस का जो प्रोग्राम होगा वो 12 बजे से ऑनवर्ड शुरू होगा। तो बिल्कुल पहुँचेगा और वहाँ पर अपने देश के लिए सम्मान अपना दिखाइएगा, और उस कार्यक्रम में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे आपको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और वहाँ पर एक स्पेशल पेंटिंग कंपटीशन भी है, पोस्टर्स बनाए हैं बच्चों ने, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और गैराज सेल में तो बहुत कुछ लगा है और आप देख सकते हैं, और डिफरेंट टाइप का खाना उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी खाने के लिए, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हर टाइप का खाना आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर जाइए और इस प्रोग्राम का हिस्सा आज बनिए। वो है 12 बजे से ये कार्यक्रम जो इंडिया इंडिपेंडेंस डे का शुरू होगा, और वो है हमारा लक्ष्मीनारायण टेम्पल। चलिए, आज बात करने वाले हैं बहुत कुछ आपके आपसे, और आज का कार्यक्रम थोड़ा सा खास और अलग इसलिए भी है क्योंकि आज हम एक फिल्म के बारे में या किसी और ऐसे सिंगर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेत्री की जिसने हमें कभी हंसाया, कभी रुलाया, कभी प्यार कराया, और कभी कभी सिर्फ अपनी एक मुस्कान से पूरा सीन अपने नाम कर लिया। जी हाँ, पहले गाना सुनते हैं और गाने के बाद हम बताएंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं।

जी हाँ बिल्कुल, सबने ठीक से पहचाना और मुझे कॉल्स भी आ गई हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही फनकारा, ऐसी एक्ट्रेस की जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जी हाँ, काजोल। और थैंक यू सो मच हाशमी जी का, सबसे पहले उन्होंने हमें कॉल किया और हमें बताया कि आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, उससे पता चलता है कि काजोल के कितने फैंस हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड। और हाँ बिल्कुल, और होने भी चाहिए कि उनकी अदाकारी ही इस तरीके की, उनका जादू ऐसा है कि सब उसमें खो जाते हैं। तो बिल्कुल, ये मूवी थी बाजीगर जो गाना आपने सुना। तो वैसे तो काजोल का सफ़र 1992 में शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हम आज काजोल जी के बारे में क्यों ले रहे हैं, क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन था 5 अगस्त को। तो हम उनके एक तरीके से ये आज का कार्यक्रम उनको हम उनके जन्मदिन की मुबारक के रूप में उनको देना चाहते हैं एज ए गिफ्ट। बिल्कुल, और उनके बनता भी है क्योंकि वो ऐसी एक्ट्रेस हैं, इतनी बढ़िया मूवीज़ उन्होंने दी हैं, इतने अच्छे अच्छे मूवीज़ में काम किया है। तो बिल्कुल, आज उनको हम ये प्रोग्राम डेडिकेट करते हैं। तो जी हाँ, उनका जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ था बॉम्बे में, और वो तनुजा जो एक बतौर खुद एक्ट्रेस रही हैं, उनकी बेटी हैं। और बहुत ही, जैसे तनुजा बहुत ज़्यादा तो नहीं पॉपुलर हुई, लेकिन उन्होंने अपने टाइम पे भी काफ़ी मूवीज़ में काम किया। तो एक तरीके से इनहेरिटेड इनको था कि ये एक्टिंग का कह सकता हूँ मैं कि उन्होंने अपना फिल्मी करियर अपना शुरू किया 1992 में बेखुदी मूवी से। लेकिन वो उस समय स्कूल में ही थी, उस समय इतना उनकी ये मूवी बहुत ज़्यादा नहीं चली। लेकिन उसके बाद जो मेन उनको सक्सेस मिली वो बाजीगर से मिली, जो नेक्स्ट ईयर ही 1993 में आई, जिसका गाना मैंने अभी चलाया। जी हाँ, अगला गाना जो मैं चलाने वाला हूँ दोस्तों, वो है मूवी ये दिल लगी का। तो ये गाना जो उनकी नेक्स्ट मूवी आई थी 1994 में, वो मूवी से मैं ये गाना चला रहा हूँ। और बिल्कुल, आप सुनिए, लेट्स लिसन द सॉन्ग।

जी हाँ, ये मूवी थी, ये दिल लगी का गाना था इस मूवी, और इस फिल्म में काजोल को एक अलग तरीके के ग्लैमरस और रोमांटिक अंदाज में दिखाया था। काजोल की खूबसूरती का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी था कि वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड हीरोइन की तरह हमेशा परफेक्टली पॉलिश नहीं दिखती थी, उनमें थोड़ी सी गर्ल नेक्स्ट डोर वाली शरारत होती थी, और शायद यही चीज़ उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से, बाकी एक्ट्रेस से अलग करती थी। जी हाँ, और अगला सॉन्ग हम सुनते हैं फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन। करण अर्जुन जो मूवी बहुत ही फेमस हुई थी, काफ़ी लोगों ने उसे सराहा था, और उसमें टॉप आर्टिस्टों ने काम किया था, यानी कि उस बॉलीवुड के जो किंग माने जाते हैं सलमान खान और शाहरुख खान, उनके साथ काजोल ने काम किया था। तो ये तो अपने आप में होना ही था, ये मूवी भी चलनी थी और गाने भी इसके बहुत बढ़िया थे। तो ये सुनते हैं गाना, जाती हूँ मैं।

0: है क्या
1: जी हाँ जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। क्या गाना था इसका करण अर्जुन का। हालांकि करण अर्जुन के गाने और भी बहुत मशहूर हुए थे, बहुत फेमस हुए थे, लेकिन ये गाना एक इतना रोमांटिक और इतना चू लेने वाला था कि यहाँ से जो बॉन्डिंग शाहरुख और काजोल की थी वो बहुत अच्छी से दिखती है। और इसमें काजोल ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग के बारे में कि उन्हें शुरू में अंदाज़ा ही नहीं था कि पूरा सीक्वेंस किस तरह शेप लेगा। और शाहरुख ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया इस गाने को कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं हो पा रही थी इस गाने में। तो उससे उनकी जो उनके साथ बॉन्डिंग थी, उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी हुई इस मूवी से। तो इस कह सकते हैं कि ये गाना एक बड़ा यादगार गाना था कोरियोग्राफी की तुलना में अगर किया जाए तो। तो चलिए अगला गाना तो मैं जो सुनाने जा रहा हूँ तो वो हर दिल की धड़कन है, हर दिलों का गाना है आई बिलीव, और हर कोई उस गाने को सुनना चाहेगा। जी आप बता सकते हैं यस दिल वाले दुनिया ले जाएंगे का जो मूवी सुपर डुपर हिट रही, जिसमें शाहरुख और काजोल की जोड़ी, और आई थिंक ये हॉल इंडिया में तो मैं जानता हूँ कई हॉल्स पे ये कई महीनों क्या सालों तक ये लगी रही। तो इस मूवी का गाना ये सुनते हैं, तुझको देखा तो जाना लगा।

क्या बात है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, मन कर रहा था ये गाना प्ले करता ही रहूं करता ही रहूं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इस मूवी के हर गाना इतना सॉलिड इतना ज़बरदस्त था कि सुनते ही रहो बस ये लगता है। और इसमें जो रोमांटिक इमेजिनेशन दिखाई है कि सरसों के खेत, यूरोप की यात्राएं, ट्रेन, परिवार, मतलब वो सब, राज और सिमरन जो इतना मशहूर हुआ नाम, मतलब राज सिमरन की जोड़ी, आप कई जगह सुनते भी होंगे, कई जगह देखते भी होंगे कि उसको कितना रिप्ले किया जाता है, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये उससे हम समझ सकते हैं कि हम कितना इस मूवी को प्यार करते हैं, इस मूवी को पसंद करते हैं। तो जी हाँ, अगला गाना जो मैं चलाने वाला हूँ वो बहुत ही फेमस मूवी, अच्छी मूवी थी, जिसमें कॉम्बिनेशन था आमिर खान, जूही चावला और अजय देवगन और काजोल का कॉम्बिनेशन। तो ये भी बहुत ही अच्छी मस्त भरी मस्ती वाली मूवी थी, रोमांस और मस्ती जिसको कह सकते हैं, कॉमिक ह्यूमर ह्यूमर था मूवी में, तो बहुत ही चीज़ें उसके अंदर थी, मतलब मैं कह सकते हैं कि मतलब इसकी खासियत इतनी है। चलिए देखते हैं।

0: We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstocks waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
1: Now, Aussie ladies and Aussie gentlemen, they all ask how and where. It's a Broadway shoe repair. It's a Broadway shoe repair.
2: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
3: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
4: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
5: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर और मैं हूं आपका होस्ट मनीष। जी हां दोस्तों, ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं केवल ICCA के सौजन्य से, दैट इज़ इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन। और जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के स्टार्ट में ही, कि आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जिसे हम हर साल मनाते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस डे, जो कि वो 15th अगस्त को होता है और उस दिन फोक फेस्ट का भी इवेंट है। तो आज हम उसको प्री सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के साथ और हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचवन के कलैबोरेट करके, और वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल में हो रहा है। 12 बजे से वहाँ पे चालू हो जाएगा और वैसे तो 10:30 10:30 से कार्यक्रम ऑलरेडी चालू हो चुका है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम 12 o'clock चालू होगा। तो और आप वहाँ पर पहुँच जा सकते हैं और ये कार्यक्रम में अपने इंडिया के की डिवोशन, इंडिया के को आप अपना सलाम दे सकते हैं। जो हम वहाँ पर का बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना है वहाँ पर, बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और साथ में गैराज सेल भी है, तो आप उस सब का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर जाइए और आप उसका कल भी गैराज सेल का इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन है तो प्लीज़ वहाँ ज़रूर जाइए। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहा हूँ तो हमारे हर्षमीत जी का कॉल आया था सबसे पहले, उन्होंने हमें बताया था कि आज हम काजोल जी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके अरमान है, उनका उनकी विश है कि वो एक इंडिपेंडेंस डे पे सॉन्ग सुनना चाहते हैं। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हर्षमीत जी अपने इंडिया को याद करने के लिए। तो वो एक गाना मूवी का है, वो भी मुझे भी बहुत अपने दिल के अजीज़ है, और वो मूवी थी कर्मा, आई थी कर्मा मूवी, देशभक्ति क्या की मिसाल है वो प्रेजेंटेशन जो उस मूवी में दिखाई थी, और इतना बेहतरीन मूवी थी और ये गाना तो वाकई में दिल को छू लेने वाला है। तो चलिए सुनते हैं ए वतन।

क्या बात है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू वंस अगेन अश्मित भाई, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, और इससे वाकई में आपका जज्बा पता चलता है अपने इंडिया के लिए कितना आज भी जगा हुआ है, कितना आपके अरमान भरे हुए हैं उसमें अपने देश के प्रति। तो दोस्तों, आप भी अपने अरमान ऐसी तरह से हमें भेज सकते हैं जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, ओनली ऑन 306-242-5002 पर कॉल कीजिए और अपनी फरमाइश हमें भेजिए, हम आपका गाना बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे। और अगर आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं तो हम उनका नाम भी ज़रूर उसमें अनाउंस करेंगे, बोलेंगे। तो अगला गाना जो हमें फरमाइश आई है वो हमारे ख़ास लिसनर हैं, क्योंकि वो लिसनर के साथ साथ हमारी होस्ट भी हैं, नेपा जी। उन्होंने हमें एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट भेजी है, आवाज़ दो हमको, फ्रॉम द मूवी दुश्मन, जिसमें काजोल, संजय दत्त और जस अरोड़ा उन्होंने काम किया था। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

क्या बात है, क्या गाना था आवाज़ तो हमको। थैंक यू वंस अगेन नेपा जी। इसी तरह से आप प्यारे प्यारे सॉन्ग आप हमें तो सुनवाते हैं ही, और आज आपने फरमाइश भी भेजी है, थैंक यू वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाना और ऐसी मूवी की बात करते हैं जिसके अंदर सब कुछ था, यानी कि रोमांस, दोस्ती, प्यार और मतलब फ्रेंडशिप। तो दोस्तों जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अंजलि की। यानी अंजलि कैरेक्टर तो आपको पता ही है, कुछ कुछ होता है क्या बहुत ही फेमस कैरेक्टर था, और शायद जिसमें शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और करण जौहर की डायरेक्शन में ये मूवी थी। ऐसा ट्रायंगल लव उसमें दिखाया था जिसमें दोस्ती, प्यार और इमोशन सब कुछ था। तो दोस्तों ये गाना जो है बताता है, और मूवी के थ्रू, के लड़कियों को जिन्होंने ना कहते हैं ना कि आपस में फ्रेंडशिप भी एक का भी एक रिश्ता होता है जो कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो इसके ज़रिए बताया, इस मूवी के ज़रिए। तो चलिए सुनते हैं कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक।

बिल्कुल, क्या करूं, हाँ ये कुछ कुछ होता है, वाकई में कुछ कुछ होता है जब ऐसी मूवी के सॉन्ग्स और इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनने को मिल जाएं। और ऐसा ही हुआ है हमारे लिसनर्स का भी, जब लिसनर्स ये गाने सुन रहे थे तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने कॉल करके बोला कि इसी मूवी का वो एक गाना सुनना चाहते हैं, लड़की बड़ी अनजानी है। आई नो लाइक इस मूवी के सारे ही सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त थे और ये गाना भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी फरमाइश की है शिफाली निहारिकार आर्यन ने। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द कॉल और हमें ये गाना सुनवाने के लिए। तो दोस्तों इसी मूवी का ये गाना हम सुनते हैं, लड़की बड़ी अनजानी है।

जी हाँ, ये था लड़की बड़ी अनजानी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन शेफाली निहारिका नारायण। ऐसा बढ़िया बेहतरीन गाना हमारे दर्शकों को आपने सुनवाया। तो दोस्तों, अगला गाना जो सुनवाने वाला हूँ वो है फ्रॉम द मूवी हम आपके दिल में रहते हैं। जी हाँ, ये मूवी में बहुत ही डिफरेंट रोल, एक मैच्योर रोमांटिक रोल किया था काजोल ने, और उनके जोड़ीदार थे अनिल कपूर जी। तो एक अलग अंदाज़ की ये मूवी थी, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इसमें काम किया था दोनों ने। और इसमें के गाने भी, इस मूवी के गाने भी बहुत ही प्यारे प्यारे गाने थे, लेकिन ये गाना हमने चुना है छुपा छुप गया।

तो ये गाना था छुप गया फ्रॉम द मूवी आपके दिल में रहते हैं। अगला गाने की जो मैं बात कर रहा हूँ वो है उनकी मूवी आई थी दिल क्या करे, जिसमें काजोल ने खाली एक रोमांटिक नहीं एक कॉमेडी रोल में भी उसमें भूमिका निभाई थी। और कहते ना ये अंदाज़ तो उसका है ही कि वो कॉमिक रोल भी बड़े अंदाज़ में बड़े अच्छे से करती हैं, क्योंकि उनकी एक स्माइल ही इतनी प्यारी है कि वो हर रोल को बड़े बखूबी से निभा लेती हैं। तो चलिए सुनते हैं गाना दिल क्या करे का टाइटल सॉन्ग।

0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और सुनते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गाने।
1: Summer can be full on. Pool days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinet 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
2: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
3: I feel like pizza.
4: I feel like beer.
5: This does not have to be a paradox.
6: Who are you?
5: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I tried to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
7: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
5: The gold, eh?
2: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
8: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
0: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर। और मैं हूं आपका होस्ट मनीष, जो आज आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने लेके आया है। और जब हम बात करें काजोल जी के बारे में, और उससे पहले बता दूं कि ये कार्यक्रम आप तक हम पहुँचा पा रहे हैं केवल ICCA के सौजन्य से, यानी इंडो कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन। तो दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, और श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल में हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचवान के साथ मिलके। तो प्लीज़ वहां पर जरूर आइए और अब इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए, और अपने देश के प्रति अपनी जज्बा हमें दिखाएँ और इसमें शामिल हों। तो दोस्तों, अगला गाना जो मैं सुनाने वाला हूँ वो तो ऐसा गाना है जिस गाना क्या उस मूवी भी ब्लॉकबस्टर थी, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, और गाने के लिए अगर मैं कहूँ तो 1 बिलियन व्यूज़ उस गाने के आए हैं। तो वो 1 बिलियन आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने इस गाने को देखा है, सुना है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी मूवी की जो 2001 की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर थी, कभी खुशी कभी गम, जिसमें कास्ट अगर देखें तो सारे ही थे, सारे टॉप कास्ट, और कह सकते हैं बॉलीवुड का पूरा एक फ्रेम जो कास्ट का है वो सारे इसमें थे। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक, करीना और भी कई सारे कलाकार। और ये गाना उस मूवी का इतना बेहतरीन गाना था। तो सुनते हैं बोले चूड़ियाँ।

0: Nope, nope, nope.
1: Allergy symptoms. You feel terrible. You look terrible. Your nose drips like a faucet. You can't.
2: घर तक आ गए और
3: के अलावा भी कुछ

0: दोस्तों, ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे गाना है सूरज हुआ मद्धम, और ये रिक्वेस्ट मेरी खुद की तरफ से।
1: क्यों पिघलने लगा

क्या बात है, क्या गाना। और हर गाना इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन था, और ये गाना मेरे वाकई में बहुत दिल के अजीज़ था, तो इसलिए मन किया कि ये गाना भी मैं चलाऊं और आपको सुनवाऊं। तो ये गाना इतना दिल को छूता है, मतलब आई डोंट लाइक, लेकिन मैं जब भी सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अगला सॉन्ग जो चलाने वाला हूँ वो मूवी है आई थी फना, और उसमें बतौर एक ब्लाइंड कैरेक्टर उन्होंने किया था, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी आमिर खान के साथ, और ये मूवी बहुत बढ़िया चली थी, इसमें काफ़ी अच्छा दोनों को सराहा गया था। तो चलिए सुनते हैं गाना चांद सिफारिश फ्रॉम द मूवी फना।

क्या बात है, क्या गाना था, चांद सिफारिश फ्रॉम द मूवी फना। इस मूवी के भी गाने सारे बहुत ही बेहतरीन थे। काजोल के लिए हम कह सकते हैं कि शायद वो लकी रही हैं कि वो काफ़ी मूवीज़ में जिसमें उन्होंने काम किया उन मूवी के गाने भी बहुत बेहतरीन थे और काफ़ी चले। तो बतौर एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है कि जब उन्हें मूवी के साथ यानी एक स्टोरी लाइन के साथ और एक्टर्स के साथ उन्हें एक गाने भी अच्छे मिलते हैं तो वो चार चांद लगा देते हैं उनकी एक्टिंग पे और उनकी मूवी पे, तो वो उतने ही चलती भी हैं। और शायद काजोल के साथ ये प्लस पॉइंट रहा है कि उन्हें मैक्सिमम मूवीज़ में गाने जो मिले बहुत ही प्यारे मिले। तो अगला गाना जो मैं चलाना जा रहा हूँ वो है रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट हमारी रेगुलर लिसनर हैं जेसिका, और उन्होंने ये सॉन्ग हमें भेजा है। थैंक यू सो मच जेसिका फॉर लिसनिंग प्रोग्राम। तो और ये गाना तो बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू। मुझे भी आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग, लेकिन बिल्कुल ये गाना है बहुत ही बेहतरीन, गेरुआ फ्रॉम द मूवी दिलवाले, गेरुआ।

क्या बात है, क्या बात है, गाना इतना बेहतरीन गाना, वाकई में मन कर रहा है कि ये गाने को सुनते रहें। अरिजीत सिंह की आवाज़ तो वैसे ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन होती है, और इन दोनों पे इतना रोमांटिक, लाइक इन्होंने पिक्चराइज़ किया इस सॉन्ग को, तो बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग लग रहा था। थैंक यू सो मच वंस अगेन जेसिका, फॉर आप हमेशा मेरे ख्याल से अलग गाने ढूंढ के लाती हैं, तो प्लीज़ इस तरह से हमें कॉल करते रहा कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगला गाना जो मैं चलाने वाला हूँ वो है, एक मूवी आई थी माय नेम इज़ खान, बिल्कुल वो कहते हैं ना काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी तो इतनी ज़बरदस्त पॉपुलर रही है कि उन्होंने कई पिक्चर एक साथ की, और उसमें से ये मूवी भी बहुत ही फेमस उनकी मूवी रही थी माय नेम इज़ खान, शाहरुख और काजोल का कॉम्बिनेशन सजदा।

0: मंदिरा, अब हमें करना चाहिए।
1: क्या बात है, क्या सॉन्ग, सजदा फ्रॉम द मूवी माई नेम इज़ खान। जी हाँ, ये भी मूवी बहुत ही बेहतरीन रही थी और बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी इसमें, मतलब काजोल तो थी साथ में, शाहरुख खान ने भी बहुत ही अच्छा रोल इसमें किया था, बहुत ही अच्छे से बखूबी अपने कैरेक्टर को निभाया था। तो अगले गाना जो मैं चलाने जा रहा हूँ वो भी एक अच्छी मूवी, लाइक की गई थी मूवी तानाजी, जिसमें अजय देवगन के साथ काजोल ने काम किया था। तो ये गाना भी आई बिलीव लाइक, हालांकि इस मूवी में गाने कम थे क्योंकि ये एक वॉरियर के ऊपर मूवी थी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें ज़्यादा दिखाया गया था, लेकिन ये गाना मैं भवानी का सॉन्ग ये चलाना चाहता हूँ मैं।

तो दोस्तों, ये था सॉन्ग मैं भवानी फ्रॉम द मूवी तानाजी। जो लास्ट सॉन्ग की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों, बिकॉज टाइम हो चला है अलविदा कहने का। उससे पहले कि अलविदा लें, ये हम लास्ट सॉन्ग चलाएंगे फ्रॉम द मूवी द ट्रायल। उनकी एक लेटेस्ट जो मूवी आई थी उसका ये टाइटल सॉन्ग मैं चलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग संगीत माला ओनली ऑन 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर, जिसके प्रायोजक है ICCA इंडिया कैनेडा कल्चर एसोसिएशन। ये कार्यक्रम तो वो पहुँचाते ही हैं, साथ ही साथ बहुत से कार्यक्रम ICCA करता है। तो प्लीज़ उनके सभी कार्यक्रमों को जुड़ने के लिए आप ICCA के मेंबर भी बन सकते हैं, और उनके इवेंट्स सारे उनकी साइट पे आपको मिल जाएंगे। आप जा सकते हैं www.icca.com पे देख सकते हैं, और गूगल भी कर सकते हैं आप जाके। जब आप सर्च करेंगे तो आपको सारे इवेंट्स भी दिखेंगे, और अगर मेंबर बनते हैं तो आपको ईमेल्स भी उसके आते रहते हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट विद ICCA, और जो यहाँ सास्केटून के लिए की कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सॉन्ग जो है दोस्तों, ये लास्ट सॉन्ग द ट्रायल, एंड टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे एट शार्प 11 to 12:30 ओनली ऑन 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन संगीत माला में। और मैं हूँ आपका होस्ट मनीष, आज आपसे विदा लेता हूँ। चलिए सुनते हैं लास्ट सॉन्ग।

0: Summer can be full on. Pool days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinite 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
1: Zesk Made Marketplace is the perfect place to experience farm-to-fork food with farm-fresh eggs, local produce, meat, and a variety of frozen on-the-go meals. There's also an ever-changing array of handmade, one-of-a-kind artworks, pottery, photography, books, and other artisan products. Visit Zesk Made Marketplace at 1621 8th Street East at Gather Local Market or online at zeskmade.ca to start your Saskatchewan farm-to-fork journey.
2: Summer is here, and the Saskatoon Symphony Orchestra is still your source for Saskatchewan's distinct, world-class, artistic musical voice. Share the joy, hope, and community of making music, and stay up to date on all the latest symphony news online. Plus, see the incredible lineup and subscribe to the latest season. The more you buy, the more you save. Give a gift, plan your next great night out, and make your life better with music. Visit SaskatoonSymphony.org today.
3: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
4: Assalamu alaikum Saskatoon. मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट उमर और आज रेडियो पे आने का जो खास मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को बताने का मकसद है कि हम जो है पाकिस्तान की सेलिब्रेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की अनाउंसमेंट से स्टार्ट करेंगे और हमें अगर याद हो तो सबसे पहले आया था कि ये रेडियो पाकिस्तान है और इसकी नशरियात का आगाज़ किया जाता है और आज पाकिस्तान बन गया है इसकी खूबसूरती और जगमगाहट इस तरह है कि हम इसको आज अपने बच्चों की छोटी छोटी एक परफॉर्मेंस से इसको हम उजागर करेंगे और इसको लेके चलेंगे पूरा हफ्ता और हम इसकी असल सेलिब्रेशन फोक फेस्ट पे करेंगे और क्योंकि 14 अगस्त जो है वो फोक फेस्ट के ऊपर है और फोक फेस्ट पे हम उसे सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम द रेडियो स्टेशन वी विश एवरीबडी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैप्पी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे Every Canadian, every Pakistani living in this world, all around the world, we like to congratulate and we would like to celebrate a Happy Independence Day with all of you. From the PCCA, Pakistan Canada Cultural Association, aap sabko dili Eid Mubarak, dher sari badaiyan aap sab ke liye. और खुशियों से मनाएं, खुशियों से सेलिब्रेट करें हम सबको इसको मिलजुल के मनाना चाहिए मेरा और आपका हम सब का है पाकिस्तान और हम सब का पैगाम है पाकिस्तान और हमें इसके लिए हम कहीं भी हों हमें इसके लिए अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी है सोनी धरती हमेशा कायम और दायम रहे और इसका सिलसिला यूं ही चलता रहे आज के लिए यहीं से साइन ऑफ और आप सबको कोशिश करेंगे कि आप सब हमसे मुलाकात करें आज जो हमारे सेलिब्रेशन होने जा रही है बच्चों के हवाले से और उनको हम सबको मनाने जा रहे हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं एक हमारे बहुत ही खूबसूरत से एक नए होस्ट और वो हैं हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है आपको
5: यस
4: रेडियो स्टेशन में आप सबको मुबारकबाद यही एक छोटी छोटी खुशियां हैं जिनको हमें बांटने की ज़रूरत है और सबको साथ लेके जाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को साथ लेके आएं हम सब मिलके पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए यहीं से साइन ऑफ और सिर्फ इस बात पर कि जीवे जीवे पाकिस्तान